0: कितनी फीस है?
1: काम होने के बाद हमारी छोटी सी फीस है जी, 199 या $499 है, डिपेंडिंग ऑन कोर्स। कोई परसेंटेज कमीशन नहीं है, मीठी बातें नहीं करते। ऑन एयर भी ये फीस है, ऑफ एयर भी ये फीस है, ऑफिस में भी ये फीस है। कोई बंदा अपनी फीस अगर लाइक था करके रेडियो पे नहीं बताएगा जो ये काम करता होगा। मोर्टेज वाले को अपने सुने के बताते फीस मेरी इतनी परसेंटेज है, क्यों हम लाइक इसमें कुछ कैच नहीं है। आप हमें कॉल करेंगे तो भी आपके नंबर उतने आने जब हमने कैलकुलेटर में डालने हैं, और जब आप लाइक इट्स देयर इज नो हिडन थिंग इन इट, आप इसमें हेजिटेट ना करें। 28 दिन रह गए हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर रही है, उसके बाद सिर्फ आपको लोन आएगा। ग्रॉस इज सेम, आज फैमिली ऑफ फोर को 80,000 आ रहा है, उसमें से 40,000 ग्रांट है, 40,000 लोन है, जो कि नो क्रेडिट चेक के, बिना क्रेडिट चेक के होता है। आप अगर 28 दिन बाद एनरोल करेंगे 80,000 ही आएगा, लेकिन सारा लोन आएगा। तो इसलिए अच्छा आप भी एनरोल करें, आप पीछे ना रहे, आपके सारे फ्रेंड्स ले चुके हैं फंडिंग को, स्किल हासिल कर रहे हैं, आप पीछे ना रहे।
0: नंबर है सराज दा 4372643175 4372643175। सराज आप भी तीन बार चार बार जितनी बार नंबर देना चाहते हैं दो।
1: बिल्कुल जी, यही टाइम है अवेयरनेस क्रिएट करने का। आज की डेट में 10 कॉल आती तो 8 बंदे रिटेन हो जाते हैं, क्योंकि उनके फायदे की चीज है, उनको पता लग जाता है।
0: हाँ।
1: नंबर हमारा है जी 437-264-31-75 437-264-31-75। उन्हें कॉल करो तो एस्टिमेट चेक को साढ़े ऑफिस आओ, टीम ऑटर में नहीं मिलते जी सर, प्रॉपर ऑफिस है, 7-8 बंदों का स्टाफ है। आए कोकोनट वाटर की 200 लाइक बॉटल आपके इंतजार कर रही है कोकोनट वाटर की। तो कॉल करें 437-264-31-75 437-264-31-75
0: 437-264-31-75 थैंक यू सो मच सराज, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो प्रोग्राम है पंजाबी रहा, ते नंबर अपना 905-673-3337 9056733337। सुनाइए फिर तुहानू चमकीला साहब प्रॉप, सॉरी है थोड़ा गाना मैं चोरी कर रहा, सो चमकीला साहब का गीत तुहानू सुनाने आ, तुसी इंजॉय करो। सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट ते अज तुसी जाना, अज रात 10 बजे तक सिर्फ $9.99 दे विच गोल गप्पे अनलिमिटेड जिन्ने मर्जी खाओ। आइस गोला 3.99, दही टिक्की चाट 5.99। लाइव फूड दे स्टेशन लाए होया सिंपल इंडियन ने, 275 गार्डन ब्रुक ट्रेल, गार्डन ब्रुक कैसलमोर, या 85 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट मिसागा फाइनेंशियल। जाना कितने है? सिंपली इंडियन, सिंपली द बेस्ट। ते अपने फ्यूनरल दी हुण प्री प्लानिंग कर सकते हो। फ्यूनरल प्री प्लान क्यों बंदा करे, फायदा बहुत वड्डा कि तुसी अज दा रेट लॉक करो, ठीक है, बड़ा बेनिफिट है। अज दा रेट तुहानू मिल रहा, भावें फ्यूनरल 25-30-50 साल बाद है, डजंट मैटर, अज दा रेट लॉक कर लो। ते तुसी कॉल करो ब्रैम्पटन क्रेमेटोरियम नू 905-458-2222 905-458-2222 ब्रैम्पटन क्रेमेटोरियम, एजैक्स क्रेमेटोरियम। ते बड़ी जल्द थोनू यह मिलनगे बर्लिंगटन दे विच भी, सो जरूर तुसी एक बार इन्हां नू कॉल कर लो 905-458-2222 दे उत्ते तुसी फोन कर सकते हो। ते चलो फिर सुनते हैं वन एंड ओनली चमकीला साहब नू, ते फिर वापस आने। इंस्टाग्राम पेज है पंजाबी लर्न।

0: multiple locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: किसी ने भी अगर कार वैन एसयूवी लेना टॉप टॉप टॉप द नाम एक है वो है एरन मिल्स एक्यूरा। एरन मिल्स एक्यूरा दे जगदीप पला अते करण शर्मा नु कॉल करो। नंबर वन सर्विस, नंबर वन रेट्स, प्रोफेशनल अते ऑनेस्ट टीम ते रिलायबल। सो कार वैन एसयूवी कोई भी लेना हो एरन मिल्स एक्यूरा 905 828 5800 905

0: मॉर्गेज दी बनी कोई गल?
1: होए शम्मी पठल होरानल हो गई गल। कार लेके देन तो अलावा डाउन पेमेंट ते मॉर्गेज दा भी मसला करनगे हल।
2: रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदन वेचन या इन्वेस्टमेंट लई याद रखो भरोसे ते विश्वास वाला कम्युनिटी दा जानिया पछाणिया नाम शम्मी पठल। तुहाडियां लोड़ां मुताबिक वधिया लोकेशंस ते बेस्ट प्राइस ते घर आसानी नाल लेके दिंदे ने। रियल एस्टेट ब्रोकर शम्मी पठल, आज ही कॉल करो 416-917-7763 416-917-7763।

जी हाँ दोस्तों, स्वागत है। चलते हैं पहली नवी ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग दे विच। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ही अकेली कनेडियन यूनिवर्सिटी है जो दुनिया दिया टॉप 20 यूनिवर्सिटियां दे विच उसने अपनी जगह बनाउन दे विच कामयाबी हासिल की है। इस रैंकिंग दे विच यूनिवर्सिटी नू विश्व पद्धर ते 20वां या 20वां स्थान मिलिया। रिपोर्ट मुताबिक कनेडा दिया होर जिहड़ियां यूनिवर्सिटियां उन्हां दिया रैंकिंग दे विच गिरावट आई है। माहिरां दा मनना इस दे पिछे है जिहड़ा खोज लई फंडिंग हो गया, अंतरराष्ट्रीय जिहड़ा मुकाबला हो गया, जां फिर हायर एजुकेशन दे विच निवेश वर्गे कारण है जिहड़े हो सकदे ने। इस दे बावजूद यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने खोज अकादमिक जां फिर विश्व पद्धरी प्रभाव दे आधार ते अपनी मजबूत स्थिति है जिहड़ी उह कायम रखी है, जिस नाल इह कनेडा दी सब तो उच्च दर्जे दी यूनिवर्सिटी बनी हुई है। एयर कैनेडा दी एक उड़ान जो न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी तो नोवा स्कोशिया जा रही सी हैलीफैक्स नू, उस वेले एमरजेंसी दे विच बोस्टन लोगन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे वाल मोड़ना पिया, जदों उड़ान दौरान जिहड़े कैप्टन सीगे पायलट सीगे उन्हां दी अचानक तबीयत खराब हो गई। सुरक्षा प्रोटोकॉल अनुसार कैप्टन नू कॉकपिट दे विचों हटाया गया ते फर्स्ट ऑफिसर सीगे जां सहायक जिहड़े पायलट सीगे उन्हां ने फिर जहाज की कंबाल कमान है जी संभाली। फर्स्ट ऑफिसर ने पूरी शांति से कहते पेशेवर ढंग के जहाज को सुरक्षित तरीके दे नाल बोस्टन विच लैंड करवाया। जहाज दे विच उस वक्त 61 यात्री है जिहड़े उह सफर कर रहे सीगे जो सारे सुरक्षित रहे अते लैंडिंग तो बाद एमरजेंसी मेडिकल टीम ने पायलट नूं तुरंत हस्पताल पहुंचाया। पायलट की मौजूदगी सेहत बारे हाले कोई जानकारी नहीं आई, कादे करके तबीयत खराब हुई। इस घटना ने पर दोस्तो एक बार फिर अच्छा मेरे मन दे विच भी सवाल हुंदा सीगा पी जदों एक पायलट है जिहड़ा सारा काम कर सकदा उहदे नाल ऑटो पायलट भी है, फिर दो दो फर्स्ट ऑफिसर है जिहड़े दो दो पायलट कई बार तीन तीन भी हुंदे है, हांजी सैकंड ऑफिसर भी हुंदा, इन्हां दी लोड़ क्यों पैंदी। पर इस घटना ने है जिहड़ा उसे चीज़ दे उत्ते उस पहलू दे उत्ते रोशनी पा दित्ती पी व्यापारक जिहड़ी हवाई यात्रा विच है जिहड़ा सुरक्षा प्रणालियां ते दो पायलट दी जिहड़ी व्यवस्था किन्नी महत्वपूर्ण है। जिहड़ी जे एक नूं कुछ हो जावे तां जिहड़ा दूसरा पायलट हैगा तां कि उह उस जहाज नूं सेफली है जिहड़ा लैंड करवा सके। एक पायलट दे असमर्थ होण दे बावजूद दूजे पायलट ने सफलतापूर्वक जहाज नूं सुरक्षित लैंड करवा के वड्डे हादसे नूं दोस्तों टाल दिता। वेनेजुएला दे विच कल रात दीआं खबरां आ रहीआं ने वी बुधवार नूं 7.1 तीबरता दा एक शक्तिशाली भूचाल आया जिस दे झटके राजधानी काराकास समेत कई इलाकियां दे विच महसूस कीते गए। ते इह खबरां आ रहीआं बहुत लंबिया लंबिया वड्डिया वड्डिया बिल्डिंगां जिहड़ियां उह तहस नहस हो गईआं, काफ़ी जानी ते माली है जिहड़ा उत्थे नुकसान होया, हजारां दे विच जानां कहिंदे उत्थे गईआं, कई है जिहड़े हजे मलबे दे थल्ले दबे होए ने। एक 7.1 दा आया ते नाल ही उस तो बाद 7.5 तीबरता दा जिहड़ा इह अर्थक्वेक है दोस्तों आया। सो हालांकि आले दुआले दे जिहड़े एरिया उन्हां नूं वार्न कर दिता गया सीगा, जिहड़े छोटे छोटे टापू भी सीगे वी भाई सुनामी है जिहड़ी आ सकदी है। सो बहुत वड्डी है जिहड़ी पद्धर ते तबाही वेनेजुएला दे एरिया दे विच दोस्तों होई है। कल कैनेडा दा स्विट्जरलैंड दे नाल मुकाबला सीगा, सो कैनेडा दी जिहड़ी फुटबॉल टीम है फीफा वर्ल्ड कप दे अपने आखिरी ग्रुप मैच दे विच स्विट्जरलैंड हथों 2-1 नाल हार दा उन्हूं सामना करना पिया। मैच दा जिहड़ा पहला हाफ सीगा ना किसी भी टीम वल्लों गोल नहीं कीता गया, पर दूजे हाफ दे शुरू दे विच ही स्विट्जरलैंड ने लगातार दो गोल करके जिहड़ी लीड हासिल कर ली। कनेडा वल्लों वी फिर डेविड जे फॉरवर्ड ने उन्होंने एक गोल करके वापसी करन दी कोशिश कीती, पर टीम है जिहड़ी वह बराबरी नहीं कर सकती। हार दे बावजूद भी कनेडा ने अपने ग्रुप दे विच दूजे स्थान ते रहिंदे होए राउंड ऑफ 32 लई क्वालीफाई कर लिया है, जो कनेडियन पुरुष टीम लई एक इतिहासक उपलब्धि है। दूजे पासे स्विट्जरलैंड ग्रुप दे विच पहले स्थान ते रह के अगले दौर विच दोस्तों पहुंचिया है। हुण कनेडा अपना अगला नॉकआउट मुकाबला जिहड़ा आ उह घरेलू मैदान दी बजाए अमरीका दे विच है जिहड़ा खेडेगा, ते ओ साउथ अफ्रीका दे नाल आई गैस है जिहड़ा उसका मुकाबला जिहड़ा इह होवेगा। सो दोस्तों दो खबरां ने जो मैं स्टोरीज है जिहड़ियां कवर करना चाहुंदा, अपने को 10 मिंट हैगे है। ते एक तां इह है पी ओंटारियो सरकार ने कल ऐलान कीता
ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 26 ਜੂਨ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਹੈ 401 ਹੋ ਗਿਆ, QEW ਹੋ ਗਿਆ, 400, 402, 403, 416, 417 ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਦਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ 110 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 110

0: पहुंचो 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी 9054512600।
1: टैक्स का सीजन आ चुका है, पुराने अकाउंटेंट नाल खुश नहीं हो या टैक्स दे विच थोड़ियां बचत किथे हुई हैं, केड़े-केड़े लिमिट्स तुहाडे लई सरकार ने सेट कीते हन, लोन मिल सकदे ने या किते भी थोड़ी कंपनी दी शेप किस तरह होनी चाहिदी है। पंजाब टैक्स सॉल्यूशन दे जगजीत साचा जी मिसिसागा ते कैम्ब्रिज दीआं दो लोकेशन तो नवीआं फाइल्स इत्थे लै रहे ने, उत्थे तुहानू सुचेत करदे हन आउण वाले समें लई। टैक्स दीआं सर्विसिज लई पंजाब टैक्स सॉल्यूशन 416-720-3642 416-720-3642 पंजाब टैक्स सॉल्यूशन।
2: ड्राइव कर रहे हो, शो नो एंजॉय कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो?
3: ड्राइविंग लाइसेंस
2: नो,
3: पुलिस ऑफिसर
2: नो, नो
3: ट्रैफिक लाइट्स
2: नो।
3: देन
1: डायमंड इंश्योरेंस दे पवन कौर गिल दा ए मैसेज, मोस्ट ऑफ इंटोरियंस इग्नोर कर रहे हैं अपनी ऑटो इंश्योरेंस रिन्यूअल या अपने रेट नो चेक कर ले। आज ही कॉल करो 30 तो वध कंपनीज नाल काम कर रहे पवन कौर गिल, 3 मिनट दे विच 300 तो लेके 1500 तक साल दी इंश्योरेंस कट सकदी है ऑटो होम और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज दी। 647-325-9100 647-325-9100 पवन कौर गिल फ्रॉम डायमंड इंश्योरेंस।
4: जिंदगी एक सफर है सुहाना।
1: की तुसी कैनेडा विच स्टूडेंट वीजा दे उत्ते वर्क परमिट ते आए होए हो या तुसी कैनेडियन सिटीजन या पीआर होल्डर हो, अपने दोस्त रिश्तेदार ते मित्रां नूं अगर विजिटर या टूरिस्ट वीजा ते कैनेडा बुलाउणा चाहुंदे हो तां परखिया ते भरोसे वाला नाम पंजाब विच सब तो वध सक्सेस रेट दे नाल ईजी वीजा विजिटर वीजा कैनेडा दा लगवा के दे रहे हन। वधेरे जानकारी लई ईजी वीजा 9592200200 9592200200 ते अज ही कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बनाओ। ਘਰ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਟਰਸ ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੋਗੇ? ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ, 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਸ, ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਕਸਟਮ ਕਾਰਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 7 ਸਾਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਈ ਸੁਖਮਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-816-8401 416-816-8401।
5: यार आजकल इकोनॉमी बहुत टफ चल रही है, ट्रकिंग इंडस्ट्री स्लो है, बिल्डर क्लोजिंग्स रुक रहे ने, कई बिजनेसेस लॉस विच जा रहे ने जिथे सेविंग्स तक खत्म होने लग जाती है। पर कैनेडा विच फाइनेंशियल स्ट्रेस के लिए लीगल ऑप्शंस अवेलेबल ने थ्रू द इनसॉल्वेंसी प्रोसेस। तुहानू डेट नू प्रॉपरली असैस करन, मैनेज करन ते सिचुएशन अकॉर्डिंग रिलीफ ऑप्शन समझाण विच हेल्प करदे ने। इस प्रोसेस नाल तुसी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन नू कंट्रोल विच ले आ सकदे हो ते अगला सही स्टेप प्लान कर सकदे हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन लई अज ही कॉल करो 416-518-3200 416-518-3200।
6: पापा पापा सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
7: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
8: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो।
9: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम टू बम ट्रैफिक एंड बम टू बम कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज।
10: ओ यार बिजनेस का माड़ा हाल होया पे, कितनियां तरकीबां लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
11: निर्बल बाबे ने कहा सी कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा तो हो ही नहीं।
12: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ले पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
13: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
14: रेडियो आवाज, रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।

0: रात हमें छड़ दिनी है, पर जनाब चले किथे हो?
1: मैं चलिया स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर, जेडे कर देने मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर।
0: ए होई हन स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज, जेना दिया जीडीए दे विच चार लोकेशन ने, मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी।
1: जी हां, कारा दे नाल नाल बसा अते वड्डे ट्रकां दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है। रेट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 905-874-9878।
2: Nobel Fresh Foods शहर विच इको दौरा पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच Nobel Fresh Food फेर नंबर ले गया। आटा दाल चावल दाल सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा Nobel Fresh Foods 2945 Sandalwood Parkway East, दूसरी लोकेशन 20 Gillingham Drive in Brampton। फोन 2898010566 Nobel Fresh Foods।
3: भाई ये ट्रक तो हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया, हुण सोचदा वी कोई यूज ट्रक ही लै लवां, पर समझ नहीं आउंदी वी कित्थों लवां।
4: ओ इहदे च सोचण वाली कड़ी गल आ, ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखू नूं कॉल कर, ओए ओहदे तों वधिया कोई नहीं।
5: जी हां, जे तुहानू यूज ट्रक दी लोड है ते तुहाडी पसंद दा मेक इन मॉडल दा ट्रक तुसी इहनां तों लै सकदे हो। अपना ट्रक वेचण लई वी याद रखो ईगल ट्रक सेल, 17 स्ट्रेटन एवेन्यू ब्रैम्पटन। कॉल बिल सेखो 416-819-6000।
6: असी कर दे हाँ फिकर, तुसी रहो बेफिकर, तुसी जियो बेफिकर।
7: की गल भाई जी, एने बेफिकर तो तुसी मेनू कदे नजर नहीं आए, राज की है? बेफिकर होने दा ए राज मेनू दिता है जसविंदर कौर तग्गर दी इंश्योरेंस पॉलिसीज ने। साडी लाइफ इंश्योरेंस ट्रक ड्राइवर्स लई डिसेबिलिटी ते क्रिटिकल इलनेस दे चंगे प्लान्स, साडे पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस ते बच्चियां लई RESP। तुसी भी रहो बेफिकर ते कॉल करो जसविंदर कौर तग्गर नूं 6477652340 647-765-2340।
8: You're listening to Grimtas Radio on AM 530 from 10 to 11 a.m. Monday to Friday with Jazz Tagar, your favorite show.

0: ਲਓ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਹ ਸੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 7.2 ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਕੁਐਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਇਆ, ਭੂਚਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਢਹਿ ਗਏ ਆ, ਲੋਕ ਦੱਬ ਗਏ ਆ ਥੱਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭੂਚਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਆਇਆ ਭੂਚਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ 164 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਗਏ ਜਦ ਤੱਕ ਬੋਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਰੈਸਕਿਊ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਬੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਭੂਚਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪਲ 'ਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਦਰ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਭੂਚਾਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੈਡ ਹੈ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਨਾ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਦਸੰਬਰ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਗਿਰ ਗਏ, ਲੋਕ ਦੱਬ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੱਡ ਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਚੜ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਉਹ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਕਿਊ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਉੱਪਰ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਡੋਟਰਸ ਹੋਣੀਆਂ, ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਲਬਾ ਇੰਨਾ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਬਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਭਾਵੁਕ ਪਲ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਫਾਦਰ ਐਕਚੁਅਲ ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਮਲਬੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਗਿਆ, ਬਟ ਹੱਥ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹਾ ਪਲ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਸੰਬਰ 1999 ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਸਟ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਉਸ ਮਲਬੇ 'ਚ ਦਬੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਜੀ ਬਚ ਜਾਣ। ਸੋ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ
1: ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੈਸੀ ਹੈ ਆਪ
0: ਜੀ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ।
1: ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ
0: ਜੀ ਜੀ।
1: ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਪਕੇ ਰੇਡੀਓ ਪੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲਾ ਥਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਔਰ ਤੂਫਾਨ ਆਏਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਬੜ ਰਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੋ ਨਾਪਸੰਦ ਹੋ ਰਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋ, ਯੇ ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਥੇ। तो वो देखिए आप ये नजर वेनेजुएला हो चाहे इजराइल हो कहीं पे भी आ सकता, क्योंकि भूचाल का दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है लेकिन आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जो ये बता सके कि भूचाल कब और कैसा आएगा और कितने रिक्टर स्केल पर आएगा। ये चीज अभी भी परमात्मा अपने हाथ में रखा हुआ है, चाहे लाख तुम तरक्की कर लो अरे इंसान तू बड़ा कमजोर है रे, बोला ऊपर वाला। तो ये तमाम चीजें हैं, तकलीफ होती है। अब देखिए वेनेजुएला के सारे लोग क्यों तकलीफ में आते, क्योंकि जब हुक्मरान कोई गलती करते और अवाम खामोश होती ना तब भड़कता ऊपर वाला कि मैं तुमको आग दिया जबान भी दिया तुम देख भी रहे हो और मुंह से कुछ नहीं बोल रहे। और ये जो है बड़ी अजीब ख्याल मुझे आता है कि खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। हम ना मजनू हैं ना फरात के कुछ लगते हैं, हम किसी दश्ते तमाशे में नहीं आएंगे। मुख्तसर वक्त ये है कि बात नहीं हो सकती, दर्द इतने हैं कि खुलासे में नहीं आएंगे। और इसकी कुछ खैर खबर है तो बताओ यारो, हम किसी और दिलासे में नहीं आएंगे। और आखिरी का शेर तो मडरों के ऊपर है कि जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, साफ लगता है कि जनाजे में नहीं आएंगे।
0: क्या बात है,
1: क्या गजब के लोग थे, कैसा बोले आप देखिए बेदी सशा रही है। हर आदमी मैंने देखा, राजेंद्र सिंह बेदी, मैं हर आदमी ने देखा इस अंदाज से गुफ्तगू करता। भाई दुनिया की क्यों नहीं फिक्र कर रहे हैं, दुनिया में रहते आप, आप नेबर्स का ख्याल रखने का हुक्म है हर उसमें ग्रंथ में, हर जो सो गुरबानी में भी है लिखा हुआ, भाई पड़ोसी का ख्याल रखो उसको तकलीफ ना हो। यहाँ तो यार पूरा मुल्क तकलीफ में होता और कोई वो नहीं देते। सबसे पहले देखिए माकानी साहब बोले, जो इमदाद बोले मैं C-130 प्लेन में भेजाऊंगा, और जो भी मदद के इंडिया भी बोला, नरेंद्र मोदी भी बोले कि भाई मैं देने के लिए तैयार हूँ किसी किस्म की सहायता हो, और पूरा जो है शोक की प्रकृत में हम आपके साथ खड़े हैं। तो इंसान जो है मदद करो, इंसानों की मदद होती। कोई जानवर देखे कभी फंस गया तो चीख चीख के वहीं मर जाता, कोई दूसरे जानवर आके देखते, मगर कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि उनके अंदर वो हिस्स नहीं दिया ऊपर वाले ने जो हमको दिया है। तो बहुत तकलीफ होती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आप हमेशा नई चीजें लाते हैं और बहरहाल बुराई को खत्म करिए दुनिया में, और गलत चीज देखे तो जरूर बोलिए, नहीं बोलने से फिर ऊपर वाला बोलता मैं बोलता हूँ ना तुमने मत बोलो मैं करूंगा ये काम।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो ये बातें होती हैं, प्लीज शुक्रिया बहुत बहुत सारों को, सत श्री अकाल।
0: जो ये प्रेसिडेंट वेनेजुएला के लेके आए थे ये है ना,
1: जी जी मडोरो नाम है उनका, हाँ मडोरो नाम है उनका, लेके आया उन्होंने जेल में। इसलिए तो ये शेर बोला मैं कि जिस तरह आपने बीमार की रुख्सत ली है साफ लगता है कि जनाजे में नहीं आएंगे, कैसा आएंगे, जेल में है ना।
0: नहीं अब उनका
1: के जनाजे नहीं
0: वहीं पे हैं वो, तो आगे क्या उनका
1: नहीं नहीं वहीं पे कहाँ है, वो तो अमेरिका में ला लिए थे ना उनको, वाशिंगटन में केस चल रहा है उनका।
0: वही मैं कह रही हूँ कि उसके बाद का क्या हुआ, हुआ कुछ है
1: उसके बाद का। उनकी जगह दूसरी जो हुकूमत केयर टेकर थी वो अमेरिका ने अपने मिजाज के बंदे को बिठा दिए, और उनकी एक और एक भी थी जिसको याद होगा मैं नाम उसका बोल रहा हूँ, उसको वो मिला था वो नोबेल पीस प्राइज,
0: ठीक है।
1: तो वो आकर डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में बोली ये ले लो तुम, मुझे मिला है तुम ले लो। तो मैं पूछ रहा हूँ देने से पहले वो ये नहीं सोच रही कि जो देने वाली कमेटी है वो कितना नाराज होगी, अगर उसको देना होता तो डायरेक्ट उसको नहीं दे देता ट्रंप को, आपको देने की क्या जरूरत है।
0: जी बिल्कुल जी।
1: सोचे भाई मैं आपको जायदाद दे रहा हूँ, आप जो आप बोल रहे हैं मेरे रिश्तेदार है, आपके रिश्तेदार है, मैं उनको दे देती हूँ, मुझे नहीं मालूम ये मेरे रिश्तेदार है काबिल होते तो मैं उनको नहीं देता, आपको क्यों दे रहा हूँ, दान में क्यों दे रहा हूँ। जरा गौर करिए ना भाई बात को, ये पॉइंट्स नहीं समझ रहे। दुनिया जो है अपने हिसाब से चल रही है, जो बैठता सीट पे ये सोचता जी मैं सबसे बड़ा फिरौन, मैं सबसे बड़ा वड्डा हूँ। अरे तुम वड्डे है ही नहीं, तुम खाने पीने वाले सोने वाले, तुमको थकान होती, तुमको प्यास लगती, तुमको बीपी तुम्हारा हाई होता। एक मेरे दोस्त थे बड़े मिलियनर, तो वो मेरे से बोलते थे यार मेरे पास दुनिया की हर खुशी है, मतलब कोई खुशी नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारा गलत फहम है। बोले कैसा बोल रहे हैं आप, मतलब वैसा बोल रहा हूँ थोड़ी देर पहले तुमने कुछ खाया ये क्या है पूछा, तो बोले वो ब्लड प्रेशर की गोली मैंने खाई। मैंने कहा अजीब बात है यार, तुम्हारा ब्लड है वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। बोले क्या बात बोले यार, आज तक जहन में नहीं आई। तो गौर करिए कि क्या चीजें हैं। फिर आपकी चीज, मैं एक फिलोसफर आदमी हूँ बीबी, मैं फलसफाना बात करता हूँ। दुनिया जो है उन चीजों पे रोशनी नहीं डालती, इनपुट नहीं डालती, योगदान नहीं डालती जिसपे मैं डालना चाहता हूँ, क्योंकि आप भूल गए मेरा काम है याद दिलाना। इंडिया में हर वकील के पीछे एक अलमारी होती है, उस अलमारी में लिखा होता है किताबों पे AIR। क्या मतलब है AIR का? AIR का मतलब है ऑल इंडिया इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसमें जूनियर देख के सीनियर को बोलता साहब ये फुला अदालत में अमृतसर में लुधियाना में जलंधर में मोहाली में ये अदालत में ये फैसला हुआ था, हम भी मांग रहे हैं, कोई नई चीज नहीं दे रहे हैं आप।
0: ठीक है।
1: तो उस पे जज खुश होता, अच्छा ये पहले भी हुआ सी, हाँ जी पहले हुआ, आप तवज्जो ही नहीं दे रहे। तो ये होती है इन्फॉर्मेशन
0: जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अभी वक्त देने के लिए, सारों को मेरी तरफ से सत श्रीकाल
0: जी। जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जी, बड़ी वधिया जड़ी गलबात है कीती और बड़ी जानकारी है, पर अपने को ना समा बहुत ही सीमित हुंदा। ते लो जी आपां हुण सारांश नाल गलबात कर लईए थोड़ी जी। यूनी ग्लोबल एडवाइजरी इंक तो सारांश है साडे नाल, ते सारांश जिहड़े बड़ी वधिया हैल्प कर रहे हैं साडे सारिआं दी। जिन्हां नूं ग्रांट चाहीदी है बस तुसीं फिर फटाफट कॉल कर सारांश नूं, ते सारांश दा मैं नंबर जरूर दऊंगी। ते पहलां आपां गलबात थोड़ी जी करिए तां कि तुसीं जिहड़ा हैगा जानकारी हासिल कर लो, ते फिर उस तों बाद कॉल करके ग्रांट दे लई एलिजिबल हो कि नहीं हो सारी जानकारी थानू फिर सारांश दे देंगे। हाँ जी सत श्री अकाल सारांश, की हाल चाल?
2: थैंक यू, सत श्री अकाल जी सारे नूं, वधिया जी तुसीं दस्सो जी।
0: जी जी बहुत वधिया। ते सारांश पहलां तां अपना दस्सो एक्सपीरियंस कि किद्दां दा रहा, जिहड़े क्लाइंट्स तुहाडे नाल जुड़दे आ ते फिर उहनां दा जिन्हां दा काम डन हो गया की फील करदे हो, किवें दा एक्सपीरियंस आ तुहाडा?
2: जब काम हो जाता है तो ब्लेसिंग्स भी देते हैं, क्योंकि हम एकदम एंड टू एंड ईमानदारी से काम कर रहे हैं। पहले जिन लोगों के लिए चीज नहीं है, न्यू है, वो हैरान होते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, ऑफिस आते हैं या फोन पे ही सेटअप कर लेते हैं। जब उनके काम में फंडिंग आ जाती है तो वो खुश हो जाते हैं, ब्लेसिंग्स भी अलग से देते हैं, हमारी छोटी सी चीज भी तब दे देते हैं। ओके, सो हमारी कंपनी का नाम है यूनिक ग्लोबल एडवाइजरी, 8 साल हो गए हैं हमें। एजुकेशन फंडिंग में हम डील करते हैं, आप कोर्सेज करें, हमारे पास गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स हैं, अकाउंटिंग करें, मैनेजमेंट सीखें, फुली ऑनलाइन आसान से कोर्सेज हैं, कोई एज लिमिट नहीं है इसमें। अगर आप पेंशन पे आप तब भी एलिजिबल हैं, अगर आप 50 इयर्स के 75-30 के आप तब भी एलिजिबल हैं। कोई क्रेडिट चेक गवर्नमेंट, इसका गवर्नमेंट आपको फंडिंग देते समय क्रेडिट चेक नहीं करती है, गवर्नमेंट आपको एजुकेशन के लिए फंडिंग दे रही है, जैसे माता पिता में बैक होम दिया करते थे। तो इसमें कुछ भी एंड टू एंड कैच नहीं है, कुछ भी हिडन नहीं है। और इसमें लाइक अगर आप लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड है, उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर है, आपकी इनकम कम है 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट पे लेस देन $70,000 है, तो ये मैसेज आपके लिए है और बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए।
0: ठीक है, और वैलिड कब तक है, कब तक ये ग्रांट है जो अवेलेबल हो सकती है?
2: हाँ जी, सो 30 से 100,000 की फंडिंग होती है, जिसमें से हाफ पोर्शन क्या है, नॉन रिफंडेबल ग्रांट, वो पैसा जो आपने वापिस ही नहीं करना होता। डिपेंडिंग ऑन फैमिली साइज, अगर आप मैरिड हैं, इन मैरिड विद किड्स हैं, ये फंडिंग बढ़ती जाती है। सिर्फ 28 दिन रह गए हैं, आज फैमिली ऑफ फोर, अगर आपके दो बच्चे हैं चाहे यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे हैं, देर काउंटेड एज डिपेंडेंट्स, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं तो उनको 80,000 की फंडिंग आ रही है, उसमें से 40,000 तो ग्रांट ये जो वापिस ही नहीं करना। जो रेस्ट $40,000 है ऑप्शनल लोन है, 0% पे है इनिशियली, और 1.5 साल बाद जो लौटाना स्टार्ट करेंगे तो उसका ब्याज सिर्फ 2.5% है पूरे साल का, मतलब 10 साल में आप जब उसे लुटाएंगे आपका ब्याज सिर्फ $4,000 है 40,000 पे 10 साल के लिए। बताइए ऐसा आपको लोन भी कहाँ मिलेगा? ओके, अगर आप 28 दिन बाद ज्वाइन करेंगे, 28 डेज बाद, गवर्नमेंट ग्रांट्स में कट कर रही है, हमारे हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट के हाथ में है, तो उसमें कुछ कैच नहीं है, कुछ हिडन नहीं है। 28 दिन बाद गवर्नमेंट का जब न्यू अकेडमिक सेशन स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से, ग्रांट गवर्नमेंट बंद कर रही है, फैमिली कोई 80,000 की फंडिंग आएगी, लेकिन सारा का सारा लोन होएगा, ग्रांट गवर्नमेंट कट कर रही है, तो अभी एनरोल पे कॉल करें।
0: ठीक है। अच्छा सारांश, जैसे ये मनी मिलती है ना, तो इस मनी को सिर्फ एजुकेशन पे ही यूज कर सकते हैं कि कहीं भी कर सकते हैं?
2: ओके, जैसे आप फैमिली ऑफ फोर का एग्जांपल लेते हैं, $80,000 आया, 80,000, उसमें से गवर्नमेंट जब फैमिली के अकाउंट में पैसे डाल रही है, हस्बैंड वाइफ के अकाउंट में, सेम टाइम गवर्नमेंट कॉलेज की फीस पे कर देती है।
0: अच्छा
2: आपकी जेब से कुछ नहीं गया, आपकी जेब से कुछ नहीं गया, फीस भी नहीं कॉलेज की गई आपकी जेब से। कल मैंने एक हाथ से कॉलेज को पैसे दे दिए उसकी फीस, डिपेंडिंग ऑन कोर्स आपकी फीस आपकी डिपेंड करती है। दूसरे आपके गवर्नमेंट ने आपके खाते में पैसे डाले, हमारे पास कुछ नहीं आया, ठीक है ओके। अब उसके बाद आप इस पैसे को कोलैटरल फ्री होता है, सिक्योरिटी फ्री फंडिंग गवर्नमेंट आपको देती है डायरेक्ट आपके खाते में, कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट आपको लिविंग एक्सपेंसेस कवर अप करने के लिए दे रही है, किसी के लिए लिविंग एक्सपेंस ग्रोसरी करना, किसी के लिए गैस स्टेशन पे गैस भरवाना, किसी के लिए बैक होम भेजना, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। जो लोग एनरोल है हमारे क्लाइंट वो सेकेंड ईयर के कोर्स कर रहे हैं, थर्ड ईयर के कोर्स कर रहे हैं, और जो रह गए हैं वो रह ही गए हैं और रह ही जाएंगे ग्रांट से। आपके लिए सब दोस्तों ने ले लिए है, आप पीछे ना रहे। अगर आप 5 कॉल मिलाएंगे, 3 ने एडमिशन ले लिया होगा, 2 ने हमसे लिया होगा, अगर वो आपको नहीं बता रहे तो आपको झूठ बोल रहे हैं।
0: ठीक है, अच्छा आपकी फीस कितनी है?
2: ओके जी, इसमें हमारी फीस है 199 या 499 डिपेंडिंग ऑन कोर्स, कोई कमीशन, कोई कैच, कोई हिडन फीस नहीं है। हम शुरू में फीस लेते ही नहीं है, आपके आप आज ज्वाइन करते हैं आसान सा फुली ऑनलाइन कोर्स, घर के कंफर्ट से आप ज्वाइन करते हैं, और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, 50 साल के पेंशन पे हैं, 2 से 3 घंटे आपने निकालने पड़ेंगे, बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए, और एग्जाम नहीं है, असाइनमेंट्स है। आप ऐसा कोर्स आज ज्वाइन करते हैं 30 से 100,000 की फंडिंग, जिसका हाफ पोर्शन तो ग्रांट है, वापसी नहीं करना, आपके अकाउंट में 30 से 90 डेज में आ जाता है फंडिंग।
0: ठीक है,
2: तब आपने ईमानदारी से, मेरी ईमानदारी या आपकी ईमानदारी चेक हो रही है, आपने हमारी फीस देनी कितनी 199 या 499 डिपेंडिंग ऑन कोर्स, फंडिंग आपके अकाउंट में आती है। गवर्नमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इधर उधर डालती है फॉरेन एड में, क्यूबा को, मोजाम्बिक को 158 मिलियन, क्यूबा को भी फिर से दिया उन्होंने, यूक्रेन को तो उन्होंने पूरा देश का डेफिसिट 60 बिलियन डॉलर, 30 बिलियन तो यूक्रेन को दे दिया। जो गवर्नमेंट वहां पैसा लगा सकती है आपका, तो आप पे लगा रही है, आपको यही शक होता है कि यहाँ तो लगा रही है, कोई कैश नहीं है जी, कॉल करें, प्रॉपर ऑफिस है जी, कोई इसमें हम टिमोटन पे नहीं मिलते, कोई ये नहीं कहते जी वर्चुअली हमारा कृष्णा में से बहुत बड़ा ऑफिस है, आए ऑफिस में हम 7 ईयर्स हो गए, हमें कोई कैच नहीं, हजारों को असिस्ट कर चुके हैं। नंबर 437-264-31-75, 437-264-31-75, कोई मीठी बात नहीं है जी, कोई इसमें कमीशन नहीं, क्योंकि सारा काम असली है। क्यों? आपका नोटिस ऑफ असेसमेंट गवर्नमेंट को सबमिट होता है, उनके पास पहले से ही है, क्या है रेफरी करेंगे इसमें, बताइए क्या ही लाएंगे इसमें आप, और हिलाने वाले लोग हैं वही पैसे लेते कमीशन वाले, इसमें हिल ही नहीं रहा। तो नंबर है जी 437-264-31-75, 437-264-31-75, उन्हें कॉल करो, एस्टीमेट चेक करो, ऑफिस आओ 437-264-3175। लिमिटेड टाइम रहेगा, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर रही है, 30 से लेके 100,000 की फंडिंग अपने अकाउंट में हासिल करे ग्रांट्स ने, तो हम किसी और ग्रांट में डील ही नहीं करते, उन सब में कैच है, सिंपल एजुकेशन फंडिंग। कॉल करें 437-264-31-75, 437-264-3175।
0: थैंक यू सरांश।
2: थैंक यू
0: जी। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਸਰਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ, 437-264-31-75, 437-264-3175। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਰਮਜੀਤ ਦਿਓਲ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਡਰੋਪ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਮਜੀਤ ਦਿਓਲ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ, ਅਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦੇ ਦਾਂ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੈਸੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਹੈ, ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਂਝ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਗਾਰੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰਬੱਤੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਸੁਲਗੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੈਂਡਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਮੈਲ ਆਊਗੀ ਅੰਦਰ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲਾਓ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਚਲੋ ਸੇਫ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਰ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਈਡ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੈੱਲ ਵੀ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ, ਅਲਾਰਮ ਵੱਜੂਗਾ, ਧੂੰਆਂ ਕਰ ਹੋਊਗਾ ਜੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਫਿਰ ਜੇ ਅਲਾਰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਊਸ ਫਾਇਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸੋ ਬੜਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਲਪੇਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਦਿਓਲ ਜੀ, ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਲਓ ਕਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਲਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਦੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨ ਜਾਓ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਫਰੂਟ, ਦਾਲਾਂ, ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਭਾਂਡੇ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਏ ਟੂ ਜ਼ੈੱਡ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਸੀ ਘੀ ਦਾ ਰੇਟ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਲੈਣੇ ਆ, ਬੜੇ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਨੋਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ। 2899801056622989801056 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੋਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਣਾ ਜੀ, ETN ਟਰੈਵਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂਰ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰੂਜ਼ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲੂਗਾ ਅਤੇ ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋ ਮੌਜ ਮਨਾਓ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੈਕ ਹੋਮ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ 905-463-1301 ਨੰਬਰ ਹੈ, 905-463-1301 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸ ਡਰੋਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਰੇਸ਼ਮ ਜੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਦਿਓਲ ਜੀ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਗਨਦੀਪ ਦਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਸਗਨਦੀਪ ਸੋਫਾ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੋਫੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਗਰੰਟੀ ਵਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸੋਫੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ।

0: चोरी होने का कोई खतरा नहीं है। साल के 365 दिन थोड़ी सेवा विच हाजर ऑल ट्रक ल्यूब एंड वॉश 905-452-99-55 905-452-9955। जे तुसी जॉब दी भाल कर रहे हो ता कैन ट्रक नू कॉन्टैक्ट करो। थोड़े कोल AZL लाइसेंस होना चाहिदा है, थोड़ा CVOR बिल्कुल क्लीन होना चाहिदा है, 2 साल दा एक्सपीरियंस भी होना चाहिदा है। कॉन्टैक्ट लई नंबर है 647-292-5557 647-292-5757।
1: महफल मीडिया एंड कैनबैक स्टूडियो प्रेजेंट्स
2: भंगड़ा एंड गिद्दा कप 2026
1: जो कि होने जा रहे हैं जून 28 दिन एतवार नूं
2: मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर।
1: तो जिते भंगड़े ते गिद्दे दे नाल नाल लाइव परफॉर्मेंस लाइव शो ते भंगड़े दे माहौल नूं होर रंगारंग करन आ रहे ने गायक
2: सरबजीत चीमा।
1: सो तुसी स्टॉल बुकिंग लई या होर जानकारी लई संपर्क कर सकते हो 647-495-3200।

ओरे म्यूजिक मैन आई लव इट। जनाब चरणजीत सिंह हूजा साहब तो दुनिया छड़ गए पर उन्होंने गीतों के जेडे पाए हुए म्यूजिक है वह तो साढ़े तक इदा ही रहने हैं ना। हूजा साहब दी यादा ही तेजा करते हैं, कभी सरदूल जी याद करी दा, कभी चरणजीत हूजा साहब याद करी दा, पर कुछ गीत इदा दे हुंदे जिंदगी दे नाल सुन लो ऑलवेज तुहाडे सोहणे सोहणे सोहणे सोहणे महबूब वर्गे लगते हैं।

0: क्या बात है जी, क्या बात है, वेरी नाइस सॉन्ग। की कहना चाहोगे जितेंद्र जी?
1: देखो अर्जेंटिलो बड़ा वधिया काम कर रहा है इस समय, ते एक अंदरली गल दा पता लगा करन कहिंदे भी करन औजले ने इन्हां नूं एक पूरी एलबम लिखण दे लई ऑलरेडी ऑफर करती है, मेरे लिए नेक्स्ट एलबम जिहड़ी आएगी शायद, आई डोंट नो लाइक राइट या रॉन्ग, पर इन्ना पता लगा भी क्योंकि इहदे जिहड़े गाने आ जिहड़ा जदों आएगा ना एक पोस्ट, ध्यान नाल समझ के देखो गलबात करन अर्जुन खास गल की है साढ़े चार ऑफिस ने, तुसी सानू रीमैक्स गोल्ड के साढ़े चार ऑफिस ने, मिसागा विच मिल सकते हो, ब्रैम्पटन च मिल सकते हो, पांचवा ऑफिस बड़ी जल्दी ओपन होने जा रहा है तो वह भी बड़ी जल्दी तुहानू दसांगे, तो साड़ी टीम नू तुसी आके मिल सकते हो, गलबात कर सकते हो। नैक्सट गलबात यह है एयरपोर्ट एंड मेफील्ड कॉर्नर के उपर एक प्लाजा बन जा रहा है जिदा कि ऑलरेडी 70% वह सोल्ड हो चुका है, 30% साढ़े को ऑकूपेंसी पई है, जे तुसी उस एरिए विच अपने लिए कोई यूनिट लेना चाहते हो साना गलबात कर लियो, ऑफिस खोलना चाहते हो अपना प्रोफेशन तां भी साना गलबात कर लियो, नंबर साढ़ा 416-265-22 बड़े रीजनेबल प्राइस के उपर तुहानू रेट लैके देंगे, तो नाल दी नाल साढ़े को कुछ ऑप्शन आईया ने, जे तुसी चाल दी चैन एक रेस्टोरेंट अपने कोया ब्रैम्पटन के जिहड़ा ये रेस्टोरेंट आ टॉप नॉच नहीं काम करवाया, वधिया सेल है 60-70,000 डॉलर की, तो यह जो बनया रेस्टोरेंट एक ब्रांडेड नेम है इंडिया का मीट शॉप का, उन्होंने नाम के उपर यह चल रहा, जे तुसी इन्हूं देखना चाहते हो साना गलबात कर लियो, जे साडे कोल पीज़ा स्टोर लेना चाहते हो ब्रैम्पटन के इस पीज़ा स्टोर के शर्मा भी ओपन कर सकते हो तां भी साना गलबात कर लियो, एक साडे कोल वॉन के पीज़ा स्टोर है, यह जो वॉन वाला पीज़ा स्टोर है इसकी खासियत की है, इसकी 40,000-50,000 डॉलर की पर मंथ सेल है, यह 2600-2700 स्क्वेयर फीट का बनया हुआ है, 40 जणा दी अंदर डाइनिंग की सेटिंग बनी हुई है, लंच भी देंदे ने, लंच के नाल सैलड वगैरह भी ने, लाइव पास्ता बनाते हैं, जो तुम इदा का पीज़ा स्टोर अपने लिए लेना चाहते हो, फ्रेंचाइज बिजनेस है, हैड घट है तुहाडी, नाल LLB अपरूवड है, तुम ये बीयर ते वाइन भी सैल कर सकते हो, नंबर साढ़ा 416-265-22 416-265-22 बड़ी जल्दी एक अगले प्रॉपर्टी देने जा रहे हैं, जे साढ़े तुहाडे कोल सहमी है टाउन हाउस है पुराना मकान है वह कन्वर्ट कर ले बड़ी जल्दी इन्फॉर्मेशन देंगे जावे, नंबर साढ़ा 416-265-22
0: बिल्कुल जी 416-265-2222 से जी है जी इन्हों गलबात कर सकते हैं, और एक बार फिर साढ़े को जरा जी कुछ मिनट जरा जी बचे है तो साड़ी लाइन जी एक बार फिर ग्रैंड फर्नीचर के जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत जी,
2: बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद जी, बिल्कुल ग्रैंड होम फर्नीचर का मैसेज दे रहे हैं जी परिवारों तक, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे वीकर के उपर साल की सब तो बड़ी जी फर्नीचर की सेल लगन जा रही है, परिवारों ने किसी भी तरह की फर्नीचर की बाई करनी है, बेडरूम सैट, सोफा सैट, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, सिर्फ अज का दिन रुक जाओ, वेट करो, ठहर जाओ, क्योंकि कल तो फ्राइडे सैटरडे संडे साल की सब तो बड़ी सेल, तो साल दिया सब तो लोएस्ट लोएस्ट लोएस्ट प्राइस मिलनी है, हरेक परचेज नाल तोहफा जिहड़ा लाजमी दिता जाना, सॉलिड वुड का कॉफी टेबल $150 का मिलूगा, साइडा वाले दोनों साइड टेबल फ्री फ्री फ्री, सॉलिड वुड का कॉफी टेबल साइडा वाले दोनों साइड टेबल $150 का मिलूगा, पर फ्राइडे वाले दिन परिवार पहुंच जाए 6085 टॉमकन रोड के उपर 6685 टॉमकन रोड डेरी टॉमकन की मेन इंटरसेक्शन हाईवे 410 तो सिर्फ 2 मिनट की दूरी के उपर 6085 टॉमकन रोड 6685 टॉमकन रोड के उपर रखने जा रही है, कैनेडा डे कैनेडा डे सेल सेल सेल,
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी, सो बिल्कुल ग्रैंड फर्नीचर से तुम पहुंच जी सकते हैं, सो बिल्कुल अपने को जरा जी 3 कमेंट बचे हैं, सो बहुत बहुत शुक्रिया, और जतेंद्र जी तुम बहुत वधिया जरा जी रियल स्टेट विच काम करते हैं, बहुत ट्रांसपेरेंसी वाला जरा जी काम हुंदा है, यही हुंदा है कि मेहनत ना काम करो, ईमानदारी ना जरा जी काम करो, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤਾਂ ਜੀ ਕੁਛ
1: ਜੀ? ਬਸ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬਾਰਬਰ ਸ਼ਾਪਾਂ ਸੇਲ ਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਿਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਸਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਫੁੱਲੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਐਂਡਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੈਰਟਨ ਕਾਲਜ ਲੱਗੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ 416-265-22। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਊ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਬਲ ਕਾਰਗਾਜ ਦਾ ਡੀਟੈਚ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਦੋ ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਸੈਲਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 20-25,000 ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਮੀ ਆ ਜਾਂ ਟਾਊਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ 416-265-2222। 416-265-22। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕੈਨ ਜੀ,
0: ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।
3: ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਏ ਨੇਚਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਕੋਨ ਇਵੈਂਟ ਸਪੇਸ ਇਨ ਮਿਸਾਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਲੀਗੈਂਟ ਬੈਂਕਵਟ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਮਨਾਓ ਜੀ। ਫੂਡ ਨੰਬਰ 1, ਸਜਾਵਟ ਨੰਬਰ 1, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। 100 to 1200 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ ਆਈਕੋਨ ਇਵੈਂਟ ਸਪੇਸ, 3rd 87 ਡਿਕਸੀ ਰੋਡ ਇਨ ਮਿਸਾਗਾ। ਲੱਕੀ ਵਾਲੀਆ ਜਾਂ ਮੋਨੂ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਘੰਟੀ ਖੜਕਾ ਲਓ 905-905-2631।
4: If risk transportation hire kar rahe ne, cross border AZ drivers, bahut hi shandar opportunity, dedicated auto parts, daily home runs, same truck te trailers, lagbhag 3000 mile per week milenge, starting from Kushawa, Etobicoke ate Bolton, je tuhade kol vi hai valid AZ license, clean CBOR te abstract US border eligibility te fast card, ta aaj hi Everest Transportation nu call karo 905-846-2229 4 या फिर 905-334-8222 यानी 905-846-2229 ते या फिर कॉल करो 905-334-82 एक्सटेंशन है 4।
3: रूपा बराड़ 5 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਟੀਮ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜਦੇ ਨੇ। 5 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਦਵਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਕੇਸ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਰੂਪਾ ਬਰਾੜ 416-999-5939 416-991-5939
5: I am Dev Takla and you are not. Muskoka under Dev.
6: This is AM 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
7: ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੱਕ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਰੇਡੀਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਰੇਡੀਓ।
8: ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਰੇਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੁਖੀ ਨਿੱਜਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਤਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰੜੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਤਨ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਰੇਡੀਓ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ। ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਰੇਡੀਓ।
7: ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ ਰੇਡੀਓ।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्टरी जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
4: Kataria Tours and Travels, located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection upper. To see cheap flight tickets, Nepal de vichu, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options suno chahide ne. Jan to see visa services Nepal de vichu, puri family vacation upper jaan di soch ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection open.
5: Nobel Fresh Foods ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਟਾਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਫੇਰ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਚਾਵਲ, ਨਾਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਸਭ ਮਿਲੇਗਾ ਨੋਬਲ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਫੂਡ। 2945 ਨੋਬਲ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਫੂਡ।
6: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
7: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
6: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
8: आज खुश तो बात हो गया
9: ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਨੋ ਬਫਰਿੰਗ ਵਾਲਾ 4K ਅਲਟਰਾ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ IPTV ਬਾਕਸ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ।
8: ਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬਿਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਬੰਗਲਾ ਹੈ, ਗਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ?
9: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਜ਼, ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਵਰਲਡਸ ਬੈਸਟ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ IPTV ਬਾਕਸ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਕਿਆ ਚਾਹੀਦਾ?
10: ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ?
9: ਓ ਭਾਜੀ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, 40 ਇਅਰਸ ਇਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ।
11: ਡਾਊਨ ਕੋ ਪਕੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
9: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ। ਐਬਨੀਜ਼ਰ ਐਂਡ ਗੋਰ ਰੋਡ, 905-204-13, ਜਾਂ ਢਿੱਲੋਂਵੀਡੀਓ.com। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ?
12: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो न सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कृषि आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है।
13: 416-570-0157। जी मैं हाँ तुहाडी अपनी शिप्रा गोयल, ते तुसी सारे सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो सुखी निजर जी दे नाल।

0: Illegal trucking is not just an industry problem. It puts our families and economy at risk. Rogue operators are putting untrained drivers behind the wheel. They dodge taxes, exploit vulnerable workers, and force honest carriers to pay the price. Join us in demanding real enforcement, real accountability, and real consequences for lawbreakers. Unsafe trucks don't stay in one province. They travel the highways that keep Canada moving. Brought to you by the Canadian Trucking Alliance's Stop Illegal Trucking campaign. Visit stopillegaltrucking.ca for details.
1: 32 55 80 ते अठानवे एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
2: हो काउंटिंग नहीं ए ते 32 55 80 ते अठानवे इंच दे टीवी ने जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना गोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलन गे हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते 32 तो अठानवे इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801-458-2828 905-450-2828 905-458-2828 905-458-2828 905-458-2828 905-458-2828 905-458-2828 905-458-2828 905-458-2828 905-458-2828 905-458-2828 905-458-2828 905-458-2828 905-458-2828 905-458-2828 905-458-2828 905-458-2828 905-458-2828 905-458

0: आओ 170 गिलडन रोड जिन नंबर 17, 170 गिलडन रोड जिन नंबर 17, टेलीफोन नंबर 6473021322, केसो 47302-1322, जेलो टायर सेंटर।
1: डरेवरी सूट कर दिया जटानू।
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग ले।
3: इसे लिए मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानूं सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लिए सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लिए हुणे कॉल।
5: सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करन नूं वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला आईपीटीवी बॉक्स है ते नाले टिल्लो वीडियो कॉल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। होर दस क्या चाहिए था?
6: क्यों कह रहे हैं यहाँ पर?
5: ओ पाजी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
7: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
5: पर टिल्लो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 या tillovideo.com। होर कोई सेवा?

0: कैनेडा दे स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो।
1: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन हुणे ही कॉल करो 416-456-6161।
2: कनेडा विच रहंदे होए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381।
2: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाओगे। हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-456-3381 416-457-3381।
5: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.deshpardesradio.com ਜਾਂ www.deshpardestv.com। ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7।

0: now.
1: Canada Day Study Visa, Express Entry, Canadian Express Entry, Spousal File, Parents PR, Super Visa, Nanny, Work Permit, Farmer, Investor, ya Self-Employed di File. Gal ki, Immigration di har problem da solution lain lai, Community de jane pehchane ate tajrabe kar Immigration Consultant, Gary Virk nu milo.
2: Koi case refuse ho gaya ya appeal te chala gaya, hove Immigration da koi bhi masla, hamesha yaad rakho ikko hi na, ate ikko hi tha. CIC Immigration, hune hi call karo, 416-400
3: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
4: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस दे सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
5: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट ले हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते
3: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381

क्या बात है, टोर गोरा चक वाला सुदेश कुमारी। हाँ चलो देखते हैं, पता नहीं मैं कभी सुनया नहीं बट ऑटोमेटिकली आ गया। खैर सो नंबर है अपना 905-673-3337 ने ते गल्लां बातां थोड़ी साड़ियां हो रही ने। एक तां तुसी याद रखो जरूर मैसेज सब्जी मार्केट दा, सब्जी मार्केट रेस्टोरेंट भी है ग्रोसरी स्टोर भी है, 24 घंटे 7 दिन दोनों लोकेशन तो खुले ने। सब्जी मार्केट ते तुसी जाओ, हरिया ताजिया सब्जियां, हरे मटर, गोल कद्दू, चप्पन कद्दू, टिंडो, फ्रेश साग, बाथू आदि मिल रहा, ते बाय वन गेट वन फ्री चिकन लेग, बिरयानी, फिश पकौड़ा। सब्जी मार्केट 10 लॉर्ड मेल गेट सैंडलवुड मैकलॉगलिन या 10970 ब्रैमली रोड ब्रैमली एंड कंट्री साइड। एक तुसी मिस्टर सिंह पीजे दी डीला दा फायदा जरूर चको यार। मिस्टर सिंह पीजे ने वर्ल्ड कप दे मौके ते बड़िया जबरदस्त डीलां लाइया हुई ने। सो मीडियम पीजा 4 topping 1 dip 1 side 24.99, लार्ज पीजा 4 topping 1 dip 1 side 27.99 ते एक्स्ट्रा लार्ज पीजा 4 topping 1 dip 1 side 31.99। 100% प्योर वेजिटेरियन मिस्टर सिंह पीजा 905-504-1000 905-500-4000 905-500-4000। मिस्टर सिंह पीजे की टीम ने तुसी जरूर याद रखो। ते साडे नाल जुड़ चुके ने सरांश यूनी ग्लोबल एडवाइजरी तो, ते सरांश कोलों गवर्नमेंट दियां एजुकेशन ग्रांट्स की जानकारी लेने हैं। सरांश

0: जिसका हाफ पोर्शन तो नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स है, जो कि टैक्स फ्री है, इनकम में भी ऐड नहीं होता, आपका चाइल्ड बेनिफिट पे भी असर नहीं पड़ता उसका, आपकी इनकम उतनी ही रहती है जितनी आपकी है। और लाइक इसमें एज कोई लिमिट नहीं है, आप 50 के हैं, 30 के हैं या 75 के हैं, पेंशन पे आप एलिजिबल है। आपको क्रेडिट चेक भी, इसमें गवर्नमेंट आपको क्रेडिट चेक नहीं करती, फंडिंग कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है, नहीं गवर्नमेंट कर रही है। सो आप पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन है, आपकी इनकम कम है 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट पे, लेस देन $70,000 है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हो गए लाइक उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, हाउसवाइफ, अनएम्प्लॉयड, कॉल करें, असेसमेंट कराएं, आप हमें अभी भी कॉल कर सकते हैं।
1: नंबर है सरांश फ्रॉम 437-264-3175। सो सुनिया कि ग्रांट बंद हो रही है, कदों बंद हो रही है, ते फंडिंग जिहड़ी है लगभग किन्ने क दी बन जांदी है?
0: हाँ जी, ग्रांट बंद है 1 अगस्त के बाद जो एनरोल करेगा उसके लिए ग्रांट्स बंद है, लोन आएगा उसके बाद जो एनरोल करेगा सिर्फ। तो लोन तो मैं रिकमेंड नहीं करता ना, तो इसलिए अवेयरनेस का मैसेज आप लाइक इसको अपने हित में लीजिए। आप कुछ ही दिन रह गए हैं, 22 जुलाई को लास्ट बैच है, मतलब 15 जुलाई के आसपास रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे, तो आप अभी एनरोल करें। फंडिंग डिपेंड करती है आपके फैमिली साइज पे, आप मैरिड हैं आपकी 45,000 की फंडिंग मिलती है, आप मैरिड विद वन किड है अप टू 60,000, मैरिड विद टू किड्स हैं तो लाइक 80,000, सिंगल मदर विद थ्री किड्स है अप टू 100,000, डिपेंड करता है फैमिली सिचुएशन पे, आपकी फैमिली सिचुएशन पे। और जितनी इनकम आपकी कम है और जितनी आपके किड्स ज्यादा हैं उतनी आपकी फंडिंग ज्यादा आती है। तो यहाँ पे आपका गवर्नमेंट आपका बैंक की तरह इनकम नहीं देख रही कितनी ज्यादा आपने इनकम कमाई है, यहाँ पे आपका फैमिली साइज देखा जा रहा है, और जितनी कम इनकम है उतना ही आपको ज्यादा फायदा है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, लाइक अनएम्प्लॉयड स्मॉल बिजनेस ओनर को अच्छा फायदा है, कॉल करें, असेसमेंट कराएं, ग्रांट्स हासिल करें।
1: नंबर है सरांश दा 437-264-3175-437-264-3175। सरांश, लोन तो पहला ही बहुत लोगों का होंगे, की पॉसिबल है कि सिर्फ ग्रांट ही मिल जाए?
0: हाँ जी बिल्कुल जी। सो आप मान के चले अगर फैमिली ऑफ फोर है तो आप जिनकी 80,000 की अप्रोक्सीमेटली फंडिंग बनती है उसमें से $40,000 तो ग्रांट है जो वापिस ही नहीं करना होता आपने, जो रेस्ट $40,000 है वो ऑप्शनल लोन है। डर लगता है लोन से, मत लीजिए, बट आप लोग जब हमारे ऑफिस आते हैं आपको पता लगता है कि लोन 0% पे है और 1.5 साल बाद भी ये लोन 2.5% है पूरे साल का ब्याज, तो कोई मतलब 95% लोग लोन भी ले लेते हैं ग्रांट के साथ। बट यस, लोन इज ऑप्शनल, ग्रांट पे आप फोकस करें, तो ग्रांट आज है कल नहीं है, तो कॉल करें, ऑफिस आए।
1: एंड मान लो कि जॉब नहीं लगती तो लोन नहीं पे कर सकते, तो फिर की होगा, लोन डिफर भी हो जाता है इस सिचुएशन?
0: बिल्कुल जी, इसमें ये चीज तो यूनिक है। सो गवर्नमेंट, आप लाइक आज एनरोल करते हैं, आपने 1 साल का कोर्स करा, आप लोन नहीं दे पाते महीने के $150-200 किस्त, आपकी जॉब नहीं लगी है, लोन डेफर हो जाता है 1 साल तक, 2 साल भी, 3 साल भी। तो मतलब आपको पहले तो कोलैटरल फ्री, सिक्योरिटी फ्री, क्रेडिट चेक फ्री फंडिंग मिलती 30,000 to $100,000 की। लोन भी अगर आपकी हालत खराब है, नहीं चल रहा खर्चा घर का, तो लोन भी आपका डेफर हो जाता है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। ग्रांट तो देनी नहीं है, लोन भी डेफर हो सकता है अगर आपकी मजबूरी है, तो आप इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। प्रॉपर ऑफिस है जी हमारा 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड पे, कोई टिम हॉर्टन में नहीं मिलते, कोई वर्चुअल ऑफिस नहीं है, कोई कैफे पे नहीं मिलते, ऑफिस आए। आज भी कम से कम 15 क्लाइंट ऑफिस आए थे और लाइक आधा से ज्यादा एनरोल हो गए हैं।
1: वेरी गुड। सो सरांज का नंबर है 437-264-3175-437-264-3175। थोड़ी कितनी फीस है, कोई हिडन फीस तो नहीं?
0: कोई हिडन फीस नहीं है, इसलिए मैं इतनी मजबूती से अवेयरनेस का मैसेज दे पाता है। कोई कैच होता तो अब तक तो कोई ना कोई आर्ग्यू करता। ओके, सो इसमें बातें, हमारी फीस काम होने के बाद $199 या $499 फ्लैट फीस है। हमारी नजर हमारी छोटी सी फीस पे, ना कि आपकी फंडिंग पे। किसी को ऐसे 30,000 बन रहा है, किसी को लाख बन रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं उससे। आप अपना, आपका पैसा अपने पास रखें, हम एक जरिया है, गवर्नमेंट पैसे दे रही है आपको और हम सिर्फ छोटी सी फीस लेते हैं अपना खर्चा चलाने के लिए। तो आप लाइक इसमें आसान से कोर्सेज है सर, आप मान के चले फुली ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आपने सिर्फ असाइनमेंट्स देनी है, एग्जामिनेशन नहीं है, असाइनमेंट्स भी हफ्ते की एक ही है यार, अटेंडेंस आपने लगानी 75%, बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए। तो कॉल करें, ऑफिस आए, गवर्नमेंट इसी चीजों में इन्वेस्ट करती है, तो देयर इज नो कैच, कुछ इसमें हिडन नहीं है। कॉल नंबर 437-264-3175 437-264-3175 अभी कॉल करें एंड एस्टिमेट लें 437-264-3175। नंबर अगेन जी 437-264-3175
1: 437-264-3175।

लग्जरी शोरूम है मास्टर मास्टर मास्टर ज्वेलर्स एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड। इन्होंने गाना रिक्वेस्ट किया, दो कबोले से सुन लेने, जो पूरा ना लग गया माफ करो, देखते हैं पहला सुन लीए।